मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पहाड़ों से उड़ते हुए ये बादल भी कितने अजीब होते हैं ना, कभी चोटियों को छू लेते हैं, कभी अचानक किसी वादी में उतर आते हैं और कभी हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता दूर निकल जाते हैं, बिल्कुल मोहब्बत की तरह। कभी एहसास बहुत करीब आ जाते हैं, कभी फासले बढ़ जाते हैं, मगर दिल के आसमान पर उस शख्स की मौजूदगी फिर भी बाकी रहती है। लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि सोचिए हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो जाए, आप दोनों के दरमियान एक छोटी सी मेज हो, इस पर चाय के दो कप रखे हों, कब से उड़ती हुई बाप सर्द हवा में तहलील हो रही हो, कब से उड़ती हुई बाप सर्द हवा में तहलील हो रही हो, सामने बादल पहाड़ों से लिपट रहे हों और आपके पास बैठा हुआ शख्स आहिस्ता से कहे कितनी खूबसूरत जगह है, और आप दिली दिल में कहें जगह खूबसूरत नहीं, तुम साथ हो इसलिए खूबसूरत है। मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के काश मोहब्बत को भी कभी किसी पहाड़ी रास्ते पर छोड़ दिया जाए, जहां मंजिल की जल्दी ना हो, मोबाइल की घंटियां ना हो, दुनिया की फिक्र ना हो, सिर्फ एक लंबा सा रास्ता हो, दोनों तरफ सरसब्ज पहाड़ हो और बादल हों, रास्ते पर बारिश के कतरे हों और साथ चलने वाला एक ऐसा हाथ हो जिसे थामकर इंसान को लगे कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, और फिर किसी खामोश वादी में जाकर बैठ जाएं, इतनी खामोशी के अपने दिल की धड़कन भी सुनाई न दे, आप कुछ न कहें वो भी कुछ न कहे, मगर दोनों जानते हों कि इस खामोशी में कितनी मोहब्बत छुपी है। कभी कभी तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू यही तो होती है लिसनर्स के, दो लोग खामोश बैठे रहे और फिर एक दूसरे को सब कुछ समझ आता रहे। मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स यहाँ पे के ताहिर कहना चाहेगा ताहिर ये कहानी सुनाने लगा है यहाँ पे के बारिश की खुशबू, पहाड़ों की खामोशी, बादलों की आवारगी और किसी अपने की कुर्बत, ये वो इम्तिजाज है जो इंसान को दूसरी दुनिया से चंद लम्हों के लिए निकाल कर अलग कर देते हैं। यूं लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे ये लम्हा सिर्फ हमारे लिए बनाया गया हो, न कल की फिक्र, न आने वाले कल का खौफ, बस ये लम्हा, ये बारिश, ये पहाड़, ये बादल, वो शख्स जिसके साथ बैठकर खामोशी में भी कुछ महसूस होता है, जो खामोशी में भी कुछ महसूस करते हैं और खामोशी भी मौसीकी बन जाती है। और अगर कभी जिंदगी आपको ऐसा लम्हा दे तो इसे जल्दी से गुजारिएगा मत। मोबाइल एक तरफ रख दीजिएगा, दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाइएगा, उस शख्स की तरफ देखिएगा जिसे आप चाहते हैं, और दिल में सिर्फ इतना कहिएगा, देखो ये पहाड़ शायद हमेशा यहीं रहें, ये बादल भी आते जाते रहें, बारिश भी हर साल बरसेगी, मगर आज का ये लम्हा, आज का ये साथ शायद दोबारा कभी मिले ना मिले, इसलिए आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ये बारिश देखनी है। लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि फिर बारिश जरा तेज हो जाए, बादल पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर अपनी आगोश में ले लें, दूर कहीं बिजली चमके और वो शख्स थोड़ा सा आपके करीब हो जाए, आप मुस्कुराकर उसकी तरफ देखें और शायद उसी एक लम्हे में आपको महसूस हो कि मोहब्बत दरअसल किसी बड़े
वादे का नाम नहीं है। मोहब्बत तो कभी कभी सिर्फ इतना इतना है कि सर्द मौसम में कोई आपके लिए चाय का कप थाम ले, बारिश में आपका हाथ पकड़ ले, खामोशी में आपके पास बैठा रहे और आपको ये एहसास दिलाए कि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके लिए एक छोटी सी जगह ऐसी भी है जहां आप मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, मुकम्मल तौर पर खुश और मुकम्मल तौर पर महबूब हैं। लेसन्स कहना चाहूंगा यहां पे कि और फिर जब शाम ढलने लगे, बादल आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने लगे, बारिश की बूंदें कम होने लगे और वादी में धुंध उतरने लगे, तो शायद आप दोनों उठें, मगर दिल न चाहे कि ये मंजर खत्म हो। आप आखिरी बार पहाड़ों को देखें, फिर उस शख्स को देखें और दिल में कहें और दिल ही दिल में कहें काश ये जिंदगी के कुछ लम्हे हमेशा ऐसे ही रहें। बारिश में भीगे हुए, बादलों में लिपटे हुए, पहाड़ों की खामोशी में छुपे हुए और तुम्हारे साथ। स्वीट लिसनर्स, आप अपने होने के एहसास दिलवा सकते हैं जी, अपने मैसेजेस कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बारिश के हवाले से मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा कि बारिश के हवाले से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि

सो लिसनर्स, मैं कहना चाहूंगा और फिर अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमें एक दूसरे से आखिरी बार बात करनी पड़े और फिर अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमें एक दूसरे से आखिरी बार बात करनी पड़े आखिरी बार बात करनी पड़े तो जाने से पहले इतना बता दे जाओ कि तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे, किस रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, किस शाम को खिड़की के पास बैठकर तुम्हें याद करेंगे और अगर बारिश बरसने लगे तो किस बहाने से खुद को समझाएंगे कि आज तुम याद आ रहे हो। क्योंकि लिसनर्स, क्योंकि शायद इसके बाद हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, तुमको आवाज नहीं देंगे, बस खामोश हो जाएंगे, तुम्हारी याद को दिल में कहीं बहुत गहरा दफन कर देंगे और खुद से कहेंगे कि अब उसे भूल जाओ। देखो फिर बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, पहाड़ों के ऊपर बादल उतर आए हैं, धुंध ने रास्तों को छुपा लिया है, दरख्तों से कतरे टपक रहे हैं और हवा में मिट्टी की वो खुशबू फैली हुई है, मिट्टी की वो खुशबू फैली हुई है जो पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर रही है। और ऐसे मौसम में दिल बहुत जिद करता है कि तुम्हें एक बार फिर आवाज दूं, कहूं कहां हो, सुन रहे हो, देखो फिर बारिश हो रही है, वही बारिश जिसमें वही बारिश जिसमें जिसमें कभी तुम्हारे साथ भीगने का ख्वाब देखा था, मगर अब नहीं। और लेसन्स, अच्छा मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।

अच्छा लिसनर्स, मैं अपना एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ, अपना एक तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पता है बारिश का मौसम मेरे लिए सिर्फ मौसम नहीं है, बारिश शुरू होती है तो मेरे अंदर जैसे कोई खामोश सा मुसाफिर जाग जाता है, जो शहर की मसरूफ गलियों, लोगों के शोर और रोजमर्रा की हंगामा खेजी से बहुत दूर निकल जाता है और मैं फिर खुद को रोक नहीं पाता, बस निकल पड़ता हूँ, कभी हरिपुर के आसपास, कभी सिरकोट और कभी उन पहाड़ों की तरफ, जहां पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे दुनिया अचानक बहुत पीछे रह गई हो। मैं जब पहाड़ों के करीब पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरी नजर उन बादलों पर पड़ती है, उन बादलों पर पड़ती है जो पहाड़ों की चोटियों से उठते हुए महसूस होते हैं, सफेद सुरमई और कभी गहरे स्याह बादल। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे ताहिर ये बात कहना चाहेगा लिसनर्स के, ताहिर यहाँ ये बात कहना चाहेगा कि मैं जब पहाड़ों के करीब पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरी नजर उन बादलों पर पड़ती है जो पहाड़ों की चोटियों से उठते हुए महसूस होते हैं, सफेद सुरमई और गहरे कभी ऐसे स्याह बादल जैसे पहाड़ों ने आसमान को अपनी बाहों में ले रखा हो, फिर अचानक बारिश की चंद बूंदें शीशे पर आकर गिरती हैं, वाइपर आहिस्ता आहिस्ता चलता है और मैं गाड़ी रोककर बस सामने देखने लगता हूँ। सामने पहाड़ होते हैं, इनके दामन में धुंध होती है और ऊपर बादल होते हैं और दरमियान में बारिश, और ऐसे लम्हे में मुझे दुनिया की किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छी बात है लिसनर्स के, ऐसे माहौल में इंसान अपने आप से भी मुतासिर होता है, अपने आप से भी मिलता है। शहर में हम हर वक्त किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, फोन देख रहे होते हैं, काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन पहाड़ों के दरमियान जब बारिश हो रही होती है ना और चारों तरफ खामोशी हो तो इंसान अपने दिल की आवाज सुन लेता है। इंसान अपने दिल की आवाज सुन लेता है। वो बातें भी याद आती हैं जिन्हें हमने मसरूफ जिंदगी में कहीं दबा दिया होता है, वो लोग भी याद आते हैं जो कभी बहुत करीब थे, वो हंसी, वो गुफ्तगू, वो इंतजार, वो मुलाकातें, और फिर दिल भी इख्तियार मुस्कुरा भी देते हैं और कहीं अंदर से थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ ना और कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश इस वक्त मेरे साथ कोई ऐसा शख्स होता जिसमें वाकई अपने दिल से चाहता हम दोनों इसी पहाड़ के सामने खामोश खड़े होते, बारिश हमारे इर्द गिर्द बरस रही होती, बादल हमारे सरों के ऊपर से खुशर, पर हम एक दूसरे से कोई बड़ी बात ना करते, बस वो मेरे साथ खड़ी होती और ये के और मैं उससे देखता रहता, शायद वो पूछती क्या देख रहे हो और मैं कहता पहाड़ नहीं उसे देख रहा होता। फिर शायद वो बारिश से बचने के लिए

याद रखिएगा लेसन्स के कुछ मौसम कपड़ों को नहीं दिल को भिगोने के लिए आते हैं। और यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लेसन्स के, पहाड़ों पर बारिश का अपना ही मिजाज होता है। कभी बूंदें बहुत हल्की होती हैं, जैसे कोई आहिस्ता छू रहा हो, और कभी बारिश अचानक तेज हो जाती है। बादल पहाड़ों को अपने अंदर छुपा लेते हैं, सामने का मंजर धुंधला दरख्त बारिश में भीग कर और भी खूबसूरत होने लग। और ये बात में यहाँ ये बात कहना में, अगर हाथ में गर्म चाय का कप हो ना और सामने कोई ऐसा बैठा हो, तो शायद जो है ना इंसान को दुनिया की दौलत शोहरत मसरूफियात सब मामूली लगने लगती हैं। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि, और सच कहूँ तो मैं जब अकेला वहाँ खड़ा होता हूँ ना, तो कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि मोहब्बत शायद इसी मंजर का नाम है। किसी के साथ होना जरूरी नहीं, किसी की कमी को है, किसी को कवर कर लेना भी मोहब्बत है। बारिश के कतरे गिरते हुए देखकर किसी एक शख्स का ख्याल आ जाना भी मोहब्बत है। और पहाड़ों के दरमियान खड़े होकर ये सोचना कि काश वो भी यहाँ होती, शायद मोहब्बत की सबसे खामोश और सबसे खूबसूरत शक्ल है जी। और फिर बादल थोड़े नीचे आते हैं और पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लपेट लेते हैं। तो मंजर ऐसा बन जाता है जैसे किसी फिल्म का आखिरी सीन हो। मैं खामोशी से खड़ा रहता हूँ, बारिश मेरे इर्द गिर्द होती है, हवा चेहरे को छूती है और सामने सिर्फ धुंध और बादल होते हैं। और उस वक्त दिल चाहता है कि कोई बात ना हो। कोई फोन ना आए, कोई जल्दी ना हो, बस ये बारिश चलती रहे, ये बादल यूं ही पहाड़ों से लिपटे रहें और ये लम्हे वहीं ठहर जाएं। और फिर वापसी का वक्त आता है, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, रास्ता वही होता है, बारिश वही होती है, मगर दिल कुछ हल्का सा हो चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने मेरी सारी थकन सुन ली हो, बारिश ने मेरी सारी उदासी धो दी हो, और बादल मेरे कुछ राज अपने साथ ले गए।

अच्छा, इस शेर से मुझे एक बात याद आई है कि मेरी वफा का तकाजा तो देख के मैंने तुझसे तेरे अलावा मांगा भी क्या। मैं कहना चाहूंगा लिसन्स कि कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही ये नहीं होती कि इंसान किसी के लिए क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ कर गुजरा, बल्कि ये होती है कि उसने अपने महबूब से मांगा ही क्या। जरा इस जुमले को जो है ना दिल पर रख कर महसूस कीजिए, फील कीजिए कि मैंने तुझसे तेरे अलावा मांगा भी क्या। कितनी अजीब सी मोहब्बत है ना, ऐसी मोहब्बत जिसमें ख्वाहिश भी एक शख्स के नाम से शुरू होती है और दुआएं भी उसी एक शख्स पर आकर खत्म हो जाती हैं। ना दौलत मांगी, ना दुनिया मांगी, ना कोई आसाइश मांगी, ना कोई और ख्वाहिश रखी, बस तुम्हारा मांगना, तुम्हारा साथ मांगना, तुम्हारी तवज्जो मांगनी, तुम्हारी वफा मांगनी, तुम्हारी एक मुस्कुराहट मांगनी, और शायद जो है ना कभी कभी तो सिर्फ जो है ना इतना चाहा कि तुम हमें अपना समझकर एक लम्हे के लिए हमारे पास बैठ जाओ। यही तो वफा है कि इंसान के पास मोहब्बत करने के लिए पूरी दुनिया हो मगर दिल सिर्फ जो है ना एक शख्स को मुंतखब करे। लोग कहते हैं मोहब्बत में बहुत कुछ चाहिए होते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत जो होती है शायद जो है ना बहुत कुछ मांगती ही नहीं, उसे तो सिर्फ जो है ना यकीन चाहिए होता है, एक हाथ चाहिए होता है जिसे थाम कर इंसान कह सके कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक आवाज चाहिए होती है जिसे सुनकर दिल की बेचैनी थम जाए, और एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसके सामने जो है ना इंसान अपनी सारी दुनिया रखकर भी ये महसूस करे कि अभी भी कुछ बाकी है।

फिर लेसन्स मैं कहना तो खैर जो है ना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं आखिर में कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कभी कभी इंसान के दिल में इतनी सारी बातें जमा हो जाती हैं कि वो जाकर भी इन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर पाता। दिल के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद होती है, हजारों सवाल, सैकड़ों शिकवे, बेशुमार ख्वाहिशें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ पुरानी यादें और किसी एक शख्स के नाम से जुड़ी हुई न जाने कितनी कहानियां। मगर जब वक्त आता है इन सबको जबान दे सकें तो अल्फाज जैसे रास्ते में ही कहीं बिखर जाते हैं। जो बात दिल ने पूरी शिद्दत से महसूस की होती है वो लब तक आते आते आधी रह जाती है, और जो जुमला कहना होता है वो सिर्फ एक खामोश निगाह बनकर रह जाता है। कभी आप लोगों ने महसूस किया कि इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है मगर सामने वाला इतना करीब होता है कि अल्फाज और भी मुश्किल हो जाते हैं। दिल कहते हैं उसे बताऊं कि तुम्हें या तुम्हारी जो है ना कितनी जरूरत है। याद रखिए कि लेसन्स के कितना अजीब है ना इंसान दुनिया से अपनी हंसी बांट लेते हैं, अपनी कामयाबियां दिखा देते हैं, लोगों के सामने मजबूत बनना खड़ा होता है और ये कि मगर जो है ना अपने दिल के अंदर छुपी हुई कमजोरी किसी को नहीं बताता, खुद अपने आप से भी छुपाए रखता है। किसी की याद, किसी की कमी, किसी के इंतजार, किसी के लौट आने

की एक नन्ही सी उम्मीद। हम सबको इंसान खामोशी से खिड़की के पास बैठा होता है, हाथ में चाय का कप, मगर जो है ना, मगर चाय कब ठंडी होगी, चाय कब जो है ना ठंडी हो जाए पता ही नहीं चलता। नजरें बारिश पर होती हैं और ख्याल कहीं कहीं बहुत दूर। सो जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बातें तो खैर जो है ना बहुत सारे हैं, अगर पूरा दिन भी बोलता रहूं तो बातें खत्म नहीं होंगी। आखिर में अल्फाज टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और जो सच्ची बातें होती हैं वो टूट फूट का शिकार बन जाते हैं। मेरी जुबान में आप लोगों ने लुकनत भी देखी होगी ना, मेरे अल्फाज जो है ना बाज़ का डगमगा जाते हैं। एहसास जो होता है, अच्छा एहसास, सच्चा एहसास और बेहतरीन एहसास, जो बनावटी बातें होती हैं, जो बनाई जाती हैं बातें, वो रिदम के साथ चलती हैं। और जो एहसास दिल के अंदर से जो है ना फूटता है तो वो टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं ऐसे ऐसे लफ्ज, ऐसे अल्फाज। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ताहिर की दुआ में, यानी कि ताहिर जमान की दुआ में आप हमेशा शामिल रहेंगे जी। रात को मेरी आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, जिधर रहें जहां रहें खुश रहें। ख्याल रखिएगा, जहां रहेगा जिधर रहेगा खुश रहेगा। तल्ली पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पामान एंड एंड तल्ली पाकिस्तान, द अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल, बाय बाय एंड मिस यू ऑल, बाय बाय, फी अमानिल्लाह।

0: जो है घूम रही थी कि आप भी थोड़ा सा बारिश बरसे क्योंकि आप शो में थे ना।
1: अच्छा कल जब मैं अच्छा सुबह का प्रोग्राम जो मैं कर रहा था उस टाइम आवाज क्लियर है ना?
0: जी भाई थोड़े थोड़े से कटिंग कर रहे थे कुछ सेकंड्स की, लेकिन आप ठीक है?
1: आप ठीक है, आपके साथ नेट का मसला होगा। प्रोफेसर हुमैरा हमें सुन रही है।
0: जी प्रोफेसर हुमैरा को मेरी तरफ से बहुत सारे सलाम, और कल अहमद ने आई थिंक मुझे सलाम किया था, उनको भी सलाम। और वो जो चार सदा की लिस्नर सुनते हैं ना FM 94 की आवाज़ उनको आ रही है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और सलाम, क्योंकि बाकी तो सुनते नहीं।
1: नहीं सुनते, महविश ने भी मैसेज किए वो भी प्रोग्राम सुन रही है, मेरे ख्याल से मनाहिल ने भी मैसेज किए वो भी प्रोग्राम सुन रही है, बहुत सारे लोग
0: हैं। जी जी भाई, लेकिन ये थ्रू वेबसाइट सुन रहे चार सदा के रेगुलर लिस्नर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे। अगर आप भाई, हम भी आपसे भी थोड़ा सा गिरा है, अगर आप ये 3-4 महीने तकरीबन 3.5 महीने आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया ठीक है, अगर आप सारी तवज्जो चार सदा वालों को देते तो शायद वो आजकल इतना आपसे नाराज ना होते।
1: नहीं इस तरह है कि नहीं
0: बराबर की शरीक थी।
1: नहीं शबनम मेरी बात सुने, क्योंकि वो प्रोग्राम
0: भाई उर्दू तरावा वाले जदार
1: नहीं इस तरह है कि वो प्रोग्राम जब मैंने सवाबी में जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया था ना, तो अनफॉर्चुनेटली 93 आप लोग मेरे साथ लिंक हो गए, तो मेरा सारा ध्यान वहां पे था, क्योंकि वो प्रोग्राम सवाबी वालों का था। उसके बाद जब मैं सवाबी से आया हूँ तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जो है चारसदा को मैंने वो किया है, तवज्जो दी है। लेकिन हाँ
0: भाई, लेकिन आपने दिया है, आप मेरी बात तो सुने पहले।
1: जी जी,
0: आपने चारसदा वालों को टाइम भी दिया है, तवज्जो भी, लेकिन उस तरह नहीं दिया,
1: क्योंकि चारसदा वाले
0: बहुत
1: है। ये बात है
0: भाई, आप मेरी बात पहले आप मेरी बात सुन।
1: अच्छा जी, मैं सुन रहा हूँ।
0: चारसदा वाले आपसे चारसदा वाले आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछना चाहते थे, क्योंकि आप कहते हैं ना कि सवाबी पे जो है कमर्शल या क्रीमों का सैलाब गुजर चुका है।
1: चारसदे पे भी गुजरा है, चारसदे पे भी क्रीमों का सैलाब गुजरा है।
0: चारसदा पे अभी शुरू हुआ है।
1: अच्छा,
0: कुछ अर्सा पहले चारसदा पे शुरू हुआ है और सवाबी पे खत्म हो चुका है। आप कह रहे हैं कि गुजर चुका है, तो गुजरने का मतलब खत्म हुआ, और यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
1: तो आपके बात के साथ मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोई और चैनल्स है, वहाँ पे मैं समझ गया। वहाँ है, हाँ मैंने ये भी कहा था कि चारसदे के लिए मैं स्पेशल प्रोग्राम करूँगा, अगर आप लोगों को याद हो।
0: भाई मुझे आज भी वो प्रोग्राम बहुत याद आता है। मैंने हम आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे मुकाबला स्टार्ट था ठीक है, तो हम उस मुकाबले में जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि पहले वो खत्म हो जाए, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे आपसे। बहुत कुछ सीखना था हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये हमारी बदकिस्मती थी,
1: शायद ये आप लोगों की बदकिस्मती है। लेकिन हाँ, अभी जो आपने मुझे जो कुछ बताया, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी रेडियो के सुनने वाले हैं मुझसे कुछ वो सुने जो वो मेंटली क्लियर हो जाए, और आई विल ट्राई अगर 93 पे दोबारा।
0: भाई आपने अभी
1: जी
0: भाई आपने अभी बात की ना गानों की और चेहरे की ऊंचाइयों वगैरह की ठीक है, तो तेरे क्या होता है नाम भूल गई,
1: मिलाजमा।
0: भाई जब आप मिलाजमा, मेरे चेहरे पे मिलाजमा बहुत ज्यादा, तो मैंने आपसे लाइव पूछा था, आपने मुझे कहा था कि अपने कुछ टेस्ट करवा ले।
1: अच्छा, मैंने आपको हाँ, मैंने टेस्ट भी आपको बताया थे, और दूसरी बात ये कि मैंने मिलाजमा की कॉजेज भी मैंने आपके साथ बात की थी कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तकरीबन 7, 8, 9 पॉइंट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे।
0: जी बिल्कुल भाई, आपको पता है जब आप प्रोग्राम करते हैं ना कमर्शियल प्रोग्राम, उसकी कदर कर क्या था
1: दोबारा, नहीं नहीं दोबारा बोले, बात सुने ना दोबारा बोले, बिलाल हवाई क्या
0: मार रहा है,
1: उर्दू में बोले बिलाल हवाई क्या, पूरा सेंटेंस बोले,
0: चिड़िया बोलिया क्या बोला, आपको किस क्या कौन से परिंदे से आपको जो है मुशाबिह कर दूं,
1: पता नहीं
0: समझ नहीं आ रहा।
1: मैं ईगल हूँ, ईगल बाज हूँ, बाज।
0: अच्छा ठीक है, बिलाल औकाब है ठीक है,
1: बिलाल औकाब।
0: अच्छा भाई आपने सुना मेरी चची वही से क्या बोल रही है,
1: क्या बोल रही है,
0: दोनों पागल इकट्ठे हो गए।
1: विमा द बाजू नु यारी खड़ी, माँ द बाजू नु यारी खड़ी, और द टपुसान दे रहा था ना वही सांगू ने। बहरहाल थैंक यू शबनम, आपके
0: मैसेज और कम पुख्तों के
1: ओवर के ओवर के
0: भाई साहब तो वदू ने हुए माँ बिलाल कदर हो कहीं खैर ले के जमुन का खुस्ता सर शरीक देख रहे दिल वाला सर हम जमुन और सर शरीक हो करे सब आबे हम जमुन और सर शरीक हो करे हम के रेडियो पाकिस्तान पर हम ने हाँ मखा गए तो कम अज कम कदर हो कई और जान के आर सब आंदे बोया कई जैसे ना कि सब लासुन अमरोड़ या चार सौ द्वार वीस
1: लकद दीरो जान वागे चिकम लासुन शबनम जमा दग प्रोग्राम जमा द जनरल प्रोग्राम के दी प्रोग्राम के द जहन जुड़वलो दो पारसवी ओका ना अग प्रोग्राम के द जहन जुड़वलो दो पारसवी।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रही हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर।
2: टोलू मुसलमानों नु रुणता खुसूसी इतला इज्तिमा सीरत खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम बा द हर काल पशान दास लहुम मंजली की खपा अकीदत और एहतराम सरा अलसम सितंबर द जियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा द मुल्क नु मोड़े उलमाए कराम और नात खानान बरख अखली कि पहाड़ी की मेहमान खुसूसी भाई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी से नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह से चार सदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी से पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह से पेखवरना और मौलाना फजल अली हक्कानी से और शेख मोहम्मद खान से चोटा लाहौर ना बखुसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान से अयूब शाह से और नूर मजीद योशमार नात खानान ब नात खानी कवि बतास्तुल मुसलमान तख्वास्ती सीरत खातमुन नबी इज्तिमा के भरपूर तादाद की शिरकत होती।

0: सवाबई होमोस पद्धति 94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल और सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई
1: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगी द दग ज्वानको प वक्त बानी गम उनकले लेशी न प रारवान वक्त की दग ज्वानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बानी और बेहतर डॉक्टर है डॉक्टी एक्नी फेस वॉश तुम चिद स्किन और एक डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर रजू की सासुद स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ना द दग दानो चिकम दागो न दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी प दे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुम ची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ प सलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com

ऐसी दूल उमर गुनाहुन में प्रेमापशी रब अदासी और सजद में पर नसीब खड़े आमीन सुमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मी नवालो गग द एफएम 94 रेडियो दिलबर स्वाभी दे मातवेल शेम शाह यानी के मुबारक शाह और द प्रोग्राम नुम दे द सेहत खबर है। मी नवालो संगे ठीक ठाक रोग रबट खुशहाल बे उम्मीद

FM 94 दिल भर रेडियो सो अभी और माइक्रोफोन के जानेब आप लोगों का साथ दे रहे हैं आप लोगों का मेजबान आप लोगों की जिनजान ताहिर जमान। कैसे हैं मेरे मोहतरम मोहब्बतों से भरे दिलों में बसने वाले बाकार भावकार और भावकार सामाइन। यकीनन कि आप जहां कहीं भी होंगे जिस कैफियत में भी होंगे मेरी आवाज अगर इस लम्हे आपकी समाधों को छू रही है तो समझ लीजिएगा कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये चंद लम्हे सिर्फ आप लोगों के नाम हैं। जरा सा अपनी मसरूफ दुनिया से एक लम्हे के लिए नजरें हटाइए, सांस को जरा आहिस्ता कीजिए, चेहरे पर दिन भर की थकन के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइए और इस आवाज को अपने करीब आने दीजिए, क्योंकि रेडियो की दुनिया भी जो है ना कितनी अजीब दुनिया है। यहाँ हजारों लोग एक ही आवाज सुनते हैं मगर हर शख्स उस आवाज को अपनी अपनी कहानी के मुताबिक महसूस करता है। तो ठीक तो है ना आप, अपनी तबीयत तो मतलब जो आप लोगों की सॉरी माजरत मतलब आप लोगों की तबीयत तो ठीक है ना। अगर आप लोगों की तबीयत ओके है, ठीक है, फाइन है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहां रखे जिधर रखे अच्छा A1 फर्स्ट क्लास मजों में रखे। एंड हो गया रहे कर गया रहे हैं क्या करने का इरादा रखते हैं, यकीनन कि आप लोगों के इरादे अच्छे होंगे जबरदस्त होंगे। एंड शायद जो है ना कोई इस वक्त दुकान बंद कर रहा होगा, कोई घर वापस आ चुका होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई अपने कमरे में खामोश बैठा, कोई घर वालों के साथ मतलब जो है ना ये कि मैं मौजूद होगा, घर वालों के साथ मसरूफ होगा, कोई अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा होगा और कोई ऐसा भी होगा जो आज पूरा दिन मुस्कुराता रहा मगर अब रात की खामोशी में खुद से पूछ रहा है कि आखिर दिल इतना थका हुआ क्यों है। मेरे उन तमाम नए सामीन को भी बहुत बहुत सलाम जी और बहुत मोहब्बत भरा खुश आमदीद जिन्होंने आज पहली मर्तबा इस आवाज को अपने साथ महसूस किया, और मेरे उन तमाम साथियों को सलाम जिन्होंने शायद जो है ना आवाज का अंदाज मेरा लहजा मेरी गुफ्तगू पहले ही मतलब सुन ली है और ये कि पहले भी कभी सुनी है। आप जहाँ कहीं भी हैं जैसे हैं बस खुश रहें जी, आबाद रहें, सलामत रहें और बताते रहिएगा कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, दिन कैसा गुजरा। यकीनन दिन अच्छा गुजरा होगा क्योंकि हर दिन अपने साथ जो है ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ जाता है कि जिसके लिए इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए ना। और जिंदगी के हवाले से अगर मैं बात करूं लेसंस तो जिंदगी भी ना बहुत तेजी से चलती है, कभी एक ही लम्हे में रुक जाती है, कभी एक ही लम्हे में चल पड़ती है। सुबह आंख खुलते ही जो है ना इंसान कामों की फहरस्त में उलझ जाता है, किसी को दफ्तर पहुंचना होता है, किसी को कारोबार संभालना होता है, किसी को घर की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, किसी को बच्चों की फिक्र होती है, किसी को मुस्तकबिल की होती है, किसी को अपने ख्वाबों की, और किसी को सिर्फ जो है ना इस बात की फिक्र होती है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। देखें हम सब अपनी अपनी जगह जिंदगी के साथ दौड़ रहे हैं जी, कभी कामयाबी हमें जो है ना आगे बुलाती है, कभी नाकामी हमें रोकने की कोशिश करती है, कभी हालात मुस्कुराकर मिलते हैं, कभी ऐसे सवाल सामने रख दिए जाते हैं जिनका जवाब जो है ना हमारे पास नहीं होता मगर फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी को तो चलना है ना भाई। जिंदगी तो जिंदगी हवाले से बात करूं तो जिंदगी तो हर सुबह खुद को दोबारा शुरू करने का एक नाम है, और इसी भाग दौड़ में या इसी भागती हुई जिंदगी में कभी कभी जो है ना कोई शख्स हमारी दुनिया में आता है, ना कोई बड़ा ऐलान करता है, ना शोर करता है, ना कोई दावा करता है, बस खामोशी से आता है और अपने हाय हाय क्या बोलूं भाई क्या बातें करूं। और इसी भागती हुई जिंदगी में कभी कभी जो है ना कोई शख्स हमारी दुनिया में आता है, ना कोई बड़ा ऐलान करता है, ना कोई शोर करता है, ना कोई दावा करता है, बस खामोशी से आता है और हमारे दिनों का अंदाज बदल देता है। उसकी मौजूदगी में हमें जो है ना किसी बड़ी खुशी की जरूरत महसूस नहीं होती, उससे दो बातें हो जाए तो दिन अच्छा लगता है।
اس کی آواز سنائی دے تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے. اس کی مسکراہٹ دیکھ لیں تو جیسے اندر کی تھکن ذرا کم ہو جاتی ہے. سو لسنرز, باتیں تو خیر میرے پاس بہت ساری ہیں. تمام سننے والوں کو ویلکم کہتے ہیں. جو بھی میرے نئے سننے والے ہیں, پرانے سننے والے ہیں, ان تمام کو میں اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. پروگرام کا نام ہے جی تیری اور میری باتیں. ہائے, تیری اور میری باتیں جب چل پڑیں تو تب کیا ہوتا ہے بھائی, بہت کچھ ہوتا ہے. ساتھ رہیں گے, ساتھ نبھائیں گے, ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں کو محسوس ہوگا, آپ لوگ فیل کریں گے, محسوس کریں گے. جئی قیمت میرے ساتھ رہے گا, اپنے ہونے کا احساس دلوائیے گا جی. اور اپنے ہونے کا احساس کیسے دلوائیں گے, آپ لوگ نے مجھے میسیجز کرنے ہیں, اور تھوڑی دیر تک آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے, شامل کریں گے.

अच्छा जर चेक करते हैं कि कितने लोग जो है ना सो चुके हैं और कितने लोग इस इंतजार में थे कि ताहिर आएगा। गो कि मैंने मतलब सुबह वाले प्रोग्राम में, मतलब जो मॉर्निंग का हमारा प्रोग्राम है, सुबह का प्रोग्राम है, उसमें ये एक बात मैंने कही थी कि मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा, नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा जी, क्योंकि हारिस जान जो है ना मुझे नहीं छोड़ रहे थे और बार बार मुझे यही कह रहे थे कि भाई आपने प्रोग्राम करना है। तो आप लोगों के लिए हम हाजिर हो चुके हैं और मेरे जितने भी दोस्त अहबाब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस पहले भी मेरी आवाज़ सुनते रहे हैं, तो वो मुझे एक एक मैसेज करके बताएं कि मेरे संग हैं, मेरी आवाज़ आपकी समाधों तक टकरा रही है, ठीक से टकरा रही है और ये कि ठीक से आ रही है। आज तबीयत भी थोड़ी सी डल है जी, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ हल्के रिदम में ही प्रोग्राम चलाएं। बल्कि 0307 0327 00 यानी कि 0307 27 00 666 ये मेरे और आपके दरमियान रबते का नंबर है जी, कॉल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, इस पे आपने आना है, जरूर आना है और अपने होने का एहसास दिलवाना है। 0307 27 00 666 0307 27 00 666 और कौन कौन चाहते हैं कि मैं सारे का सारा प्रोग्राम उर्दू में करूं और कौन कौन चाहते हैं कि मैं पश्तो भी बोलूं, पश्तो में भी बात होनी चाहिए।

अच्छा जी, कुछ टेम्पो को हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चेंज करते हैं, एंड स्लो टेम्पो में भी आप लोगों से, आप दोस्तों से बातें होंगी। विल वेलकम तमाम दोस्तों को जो कि समातुक बिसारा से मेरी आवाज़, यानी कि ताहिर जमान की आवाज़ सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी से। रेडियो दिलबर स्वाबी की आवाज़ कहाँ किधर सुन जा रही है जी, इस सवाल से भी जरा मुझे बताइएगा। और साथ साथ ये कि किन किन लोगों को इंतजार था, किन किन लोगों को मतलब जो है ना ये पूरा यकीन बावर था कि ताहिर आएगा, और ताहिर आज भी मतलब ये कि प्रोग्राम को प्रेजेंट करेगा, ताहिर आज भी प्रोग्राम करेगा। अच्छा, मौसम के हवाले से तो खैर मैंने सुबह वाले प्रोग्राम में, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में, बारिश के हवाले से काफी सारा एक मंजर आप लोगों के लिए मंजर कशी की जी। अच्छा, रेडियो की दुनिया भी जो है ना बड़ी अजीब दुनिया है, इसमें मंजर कशी जो है ना बहुत ही जबरदस्त करता है अगर बोलने वाला अच्छा बंदा हो तो। मतलब ये ना कि बोलने वाला बंदा जो है ना जिसके पास लफ्ज हों, अल्फाज हों, तो वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मंजर कशी कर सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही जबरदस्त काम है जी, और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है भाई रेडियो प्रोग्राम्स करते हुए, रेडियो पे बोलते हुए, अपने लोगों के सामने बात करते हुए। क्योंकि मैंने ये पहले ही बात थोड़ी सी बयान कर दी थी भाई कि अच्छा दूसरे स्टेशन पे मैंने ये बात की थी, यहाँ पे FM 94 पे पता नहीं ये बात मैंने कही है या नहीं कही। लफ्जों का भी अपना एक जादू होता है ना, और ये जादू जो है ना दिल वाले लोग जो है ना समझ सकते हैं जी, जिन लोगों के साथ दिल होता है या जिन लोगों के पास जो है ना दिल की एक अच्छा जी, आज के एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौजू है, मौजू के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी चंद बातें करना चाहूंगा, देन फिर जो है ना आगे चल के मजीद हम गुफ्तगू करेंगे और मजीद हम अपना टेम्पो भी चेंज करेंगे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में मोहब्बत बनकर नहीं सुकून बनकर आते हैं, कितना आप इस चीज पे बावर करते हैं, यकीन करते हैं। ये याद रखिएगा लिसनर्स के, ये लोग जो है ना बहुत अजीब होते हैं, ये आपसे ये नहीं पूछते कि आपने जिंदगी में कितना कमाया, कितनी कामयाबियां हासिल की, कितने कामयाब हुए, कितने लोगों को मुतासर किया, कितने ख्वाब पूरे किए, ये बस जो है ना आपको देखते हैं और कहते हैं कि आज थके हुए लग रहे हो। आप हैरान होते हैं कि इतने लोगों में सिर्फ जो है ना किसी एक शख्स ने कैसे मतलब ये बात महसूस कर ली या कैसे फील कर ली, और फिर आप मुस्कुराकर कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, और वो हल्की सी मुस्कुराहट आपके आपके साथ जो है ना जवाब मतलब देते हैं, हाँ तुम हमेशा यही कहते अच्छा ये याद रखिएगा कि सुकून देने वाले लोग हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत होते हैं ना, उनके साथ बैठकर खामोश रहना भी अच्छा लगता है, उनसे बात करने के लिए मौजू तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ ये बात भी ताहिर कहना चाहेगा कि कभी 10 मिनट की गुफ्तगू पूरी शाम को खूबसूरत बना देती है, कभी उनका सिर्फ एक जुमला पूरे दिन को बेहतर बना देता है या पूरे दिन का बोझ हल्का कर देता है। वो हमारी जिंदगी के मसाइल खत्म नहीं करते, मगर उनके यहाँ ये बात मैं बेहतर अंदाज में कह सकता हूँ, मगर उन मसाइल का सामना करने की ताकत जरूर दे देते हैं जी। और यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा लिसन्स के खाते, मगर जो है ना हमें ये एहसास जरूर दे देते हैं कि अगर रास्ता मुश्किल भी है तो हम अकेले नहीं हैं जी। और शायद यही मतलब जो है ना एक जिंदगी का, शायद यही सुकून किसी भी रिश्ते की असल खूबसूरती होता है। शोर बहुत से रिश्तों में मतलब जो है ना होता है, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा है मानना। ना सुना दावे भी बहुत सारे लोग करते हैं, वादे भी बहुत सारे लोग करते हैं, मगर सुकून हर किसी से नहीं मिलता जी। कुछ लोगों के साथ बैठकर इंसान थक जाता है और कुछ लोगों के साथ बैठकर इंसान अपनी थकन भूल जाता है। कुछ लोग गुफ्तगू खत्म होने के बाद भी जहन में जो है ना शोर छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग खामोशी के बाद भी दिल में सुकून छोड़ देते हैं ना।

जनाब एक मर्तबा तो फिर मैं आप लोगों को ताहिर जमान वेलकम करते हैं जी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलबर सोबी से। हाँ डेरा खलका ना बल्कि डेरा खलका देर खल कच गमनो फदी इंतजार इबा इंतजार करी छे ताहिर वा राजी और ताहिर बच गमन मुंगसर प्रोग्राम के मुंगसर खबर के ग्रानियो का अरजानी लेकिन गमनो अरजान खैर इंतजार तो मुंग नशीले इंतजार हो इंतजार ही जी इंतजार ग्राने पुख्तो टफे प्रोग्राम के शामिल हो मो आओ दी टफो सर बखबर तेरे तस रखो जी आओ कसो प्रोग्राम तर अतल गौड़ी या प्रोग्राम के शामिल दल गौड़ी अकबल मौजूदगी माला एहसास राखो लिशी या मतलब कसो राखो गौड़ी नुकुरबान तस अकबल मौजूदगी माला एहसास रा कीजिए एंड यो सो पैगाम हम रागली दी मैसेज हम रागली दाव प्रोग्राम के शामिल हो प्रोग्राम हिस्सा जुड़े हुआ दस टपी दी गना दस टपी दी जो लय दस इंतजार लेकिन कम देनो इसी वजह से मैं कह रहा था ना कि मेरा गला भी ठीक नहीं है भाई मुझे आराम करना है लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग मुझे छोड़ते ही नहीं है कि प्रोग्राम करें भाई प्रोग्राम करें

और आवाज के रिश्ते के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि आवाज जो होती है, आवाज का रिश्ता, आवाज का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। मैं आपको देख नहीं सकता, आपके चेहरे के तासरात नहीं जानता, आपके कमरे का माहौल नहीं देख सकता, मगर फिर भी जब माइक के सामने बैठता हूँ तो दिल में जो है ना एक अजीब सा यकीन होता है कि मेरी बात दूसरी तरफ किसी ना किसी दिल तक जरूर पहुंच रही होगी। शायद कोई जो है ना मेरी बात पर मुस्कुरा रहा होगा, शायद कोई जो है ना खामोशी से सुन रहा होगा, शायद किसी ने वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा, शायद जो है ना कोई कह रहा होगा कि आवाज जरा और ऊंची करें, बात बहुत अच्छी हो रही है, बात बड़ी मतलब प्यारी हो रही है। और जनाब यही तो रेडियो की खूबसूरती है, हम एक दूसरे को देखे बगैर जो है ना एक दूसरे की महफिल का हिस्सा बनते हैं। और आपकी आवाज मेरे पास नहीं, मगर जो है ना आपकी मौजूदगी एक मतलब जो है ना एहसास बनकर जरूर मेरे सामने आ रही है, मेरे पास आ रही है। आपका चेहरा सामने नहीं है, मगर जो है ना आपकी समातों का तस्वीर मेरे साथ है जी। और मेरी आवाज आपके घर तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है आई डोंट नो, ये भी अपने अंदर जो है ना एक पूरी कहानी है ना। माइक से निकली हुई आवाज, स्टूडियो के सिस्टम से गुजरती हुई आवाज, एक तकनीकी सफर तय करती हुई आवाज, ट्रांसमीटर तक पहुंचती हुई आवाज, और फिर मतलब जो फिजा में सिग्नल फैलता है और फिर फिजा में फैल कर न जाने कितने घरों, कितने रास्तों, कितनी गाड़ियों और कितने दिलों तक पहुंचती है। कहीं कोई इस आवाज को साफ सुन रहा होता है, कहीं सिग्नल जरा कम होते हैं, कहीं कोई एंटीना अपनी जगह खड़ा जो है ना इस आवाज को पकड़ रहा होता है, और यूं एक इंसान की आवाज हजारों इंसानों की शाम का एक हिस्सा बन जाती है, फिर देखा जाए तो या महसूस किया जाए तो रात का एक हिस्सा बन जाती है। अच्छा, इस रिश्ते के हवाले से यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, ये रिश्ता भी अजीब है जी और खूबसूरत भी है, क्योंकि आपने शायद जो है ना मुझे कभी देखा ना हो या देखा भी हो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, मगर मेरी आवाज आपके लिए मानूस हो सकती है। आपको शायद जो है ना मेरे आने का वक्त याद हो, मेरे बोलने का अंदाज याद हो, मेरे मखसूस जुमले याद हों, और मुझे ये मालूम नहीं है कि इस वक्त जो है ना दूसरी तरफ कौन बैठा है, मगर फिर भी आपको मेरे सामने कहकर मुखातिब करना जो है ना मुझे खुशी देता है जी। तो दिल को लगता है जैसे जो है ना मैं किसी से बहुत बड़ी मगर बहुत अपनायत भरी महफिल में बैठकर बात कर रहा हूँ।

अच्छा ये मेरे बैकग्राउंड पे जो ट्रैक चल रहा है भाई, पागल दिल के हवाले से बात हो रही है ना, लेवाने जड़े में ना सबरी की है। कुछ लोग ना जिंदगी में किसी ऐलान के साथ नहीं आते, तो जोड़ी गमदन खंदा पर अगली आओ तो सिर्फ खंदा पे जने नोर गमदन होता उसका सन्न वर्जी अच्छा ये मेरे बैकग्राउंड पे जो ट्रैक चल रहा है भाई, पागल दिल के हवाले से बात हो रही है ना, लेवाने जड़े में ना सबरी की है। कुछ लोग ना जिंदगी में किसी ऐलान के साथ नहीं आते जी।

ऑल एट स्वीट लिसनर्स, एक मर तो फिर मैं आप लोगों को ताहिर जमान वेलकम कहते हैं दिलबर रेडियो FM 94। अच्छा लिसनर, मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप अगर मुझे अपने पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो आप अपने पैगाम मुझे भिजवा सकते हैं। मैं लिसनर्स बात करना चाहूंगा यहाँ पे, बात करना चाहूंगा कि रोमान के बगैर जिंदगी शायद चल तो सकती है, मगर उसमें वो नरमी, वो लताफत, वो खुशबू कहाँ रहेगी या कहाँ रहती है जो इंसान के मामूली दिन को भी खास बना देती है। रोमान कोई एक लम्हा नहीं है, कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक ताल्लुक नहीं है। रोमान तो दरअसल जिंदगी को महसूस करने का एक अंदाज है। किसी की बात को तवज्जो से सुन लेना, किसी की खामोशी को समझने की कोशिश करना, बारिश में खिड़की के पास बैठकर मतलब जाना चाय पीना, और बारिश में खिड़की के पास बैठकर चाय का कप थामे किसी खूबसूरत ख्याल में खो जाना, किसी के लिए बेसबब मुस्कुरा देना, किसी की खुशी में दिल से खुश होना, किसी की थकन देखकर खामोशी से पानी का गिलास सामने रख देना, ये सब रोमान ही की मतलब है ना, सूरतें हैं जी, शक्लें हैं। मैं कहना चाहूंगा रोमान के हवाले से लिसनर्स यहाँ पे कि रोमान जिंदगी के उन छोटे छोटे लम्हों में छुपा होता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर गुजर जाते हैं, हालांकि बाद में यही मामूली लम्हे हमारी सबसे हसीन याद बन जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर कीजिएगा लिसनर्स के, एक ऐसी जिंदगी का जहां सब कुछ मौजूद हो, घर हो, काम हो, मसरूफियात हो, पैसा हो, कामयाबियां हो, लोग हो, मुलाकातें हो, मगर दिल में किसी खूबसूरत एहसास के लिए जगह ना हो। सुबह आए, शाम हो, रात उतरे और अगला दिन शुरू हो जाए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है लिसनर्स। और यहाँ

हवाले से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं रोना चाहता हूँ कि जरा तसव्वुर कीजिएगा एक ऐसी जिंदगी का जहाँ सब कुछ मौजूद हो, घर हो, काम हो, मसरूफियात हो, पैसा हो, कामयाबियां हो, लोग हो, मुलाकातें हो, मगर दिल में किसी खूबसूरत एहसास के लिए जगह ना हो। सुबह आए, शाम हो, रात उतरे और अगला दिन शुरू हो जाए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहे मगर दिल के किसी लम्हे पर ठहर कर ये ना कह सके वाह ये लम्हा कितना खूबसूरत है। ऐसी जिंदगी में कमी शायद किसी चीज की नहीं होती मगर कैफियत की होती है, और रोमान इसी कैफियत का नाम है जो जिंदगी को सिर्फ गुजारने के बजाय महसूस करना सिखाती है। रोमान इंसान को ये सिखाता है कि हर खूबसूरती बड़ी चीजों में नहीं होती, कभी कभी किसी की आंखों में देखकर मुस्कुरा देना एक मुकम्मल दास्तान होती है। कभी किसी के बालों में उंगलियां फेरने के बजाय सिर्फ उसके थके हुए चेहरे को देखकर ये कहना कि आज तुम आराम कर लो भी मोहब्बत से कम नहीं है लिसनर्स। कभी किसी की पसंद याद रख लेना, कभी उसके आने से पहले उसकी पसंद की चाय बना देना, कभी उसकी आवाज में छुपी हुई थकन महसूस कर लेना, ये सब रोमान के वो अंदाज हैं जिन्हें शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है मगर दिल फौरन पहचान लेता है। रोमान का ताल्लुक सिर्फ दो आशिकों से भी नहीं है लिसनर्स। रोमान का ताल्लुक सिर्फ दो आशिकों से भी नहीं, एक माँ का अपने बच्चे के पाल संवारना, बाप का खामोशी से औलाद की जरूरत पूरा करना, बहन भाइयों का एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होना, दोस्त का मुश्किल वक्त में बगैर बुलाए पहुंच जाना, इन सब में भी एक नरमी मौजूद है और इन सब में भी एक रोमान मौजूद है। रोमान दरअसल तवज्जो, अपनाइयत और एहसास की वो जबान है जिस पर शायद के जितनी बात की जाए कम है। तवज्जो, अपनाइयत और एहसास की जबान है जहां इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। लेकिन लिसनर्स, कुछ लोग रोमान के नाम से ही घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि रोमान फजूल चीज है, ये सब किताबों और फिल्मों की बातें हैं। हकीकी जिंदगी में रोमान कहाँ होता है? कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, कुछ इसे वक्त का जिया समझते हैं, टाइम का जिया समझते हैं। कुछ कहते हैं कि इंसान को अमली होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जज्बाती नहीं। अपनी जगह दुरुस्त है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, मिसाइल भी होते हैं, हकीकतें भी होती हैं, मगर सवाल यह है क्या हकीकत पसंद होने का मतलब बेहोश हो जाना होता है? कुछ जरा पॉइंट से समझिएगा, क्या हकीकत पसंद होने का मतलब बेहोश हो जाना होता है? जी बेहिस हो जाते हैं लोग, बेहिस हो जाना होता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे ना आपने, क्या हमारी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि हम खूबसूरत एहसास से दस्तबरदार हो जाएं? क्या जिम्मेदार इंसान मुस्कुरा नहीं सकता? उसे ये हक नहीं है कि वो मुस्कुराए? क्या मसरूफ इंसान किसी के लिए चंद नरम अल्फाज नहीं कह सकता? क्या मजबूत इंसान कभी किसी के सामने अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता? यकीनन नहीं। इंसान जितना भी मसरूफ हो उसके अंदर एक दिल मौजूद होता है, एक दिल।

मैं सिर्फ कहना चाहूंगा यहां पे कि जो लोग कहते हैं कि रोमान से क्या हासिल होता है, उनसे शायद सिर्फ इतना पूछना है मैंने कि में हासिल ही सब कुछ है, या महसूस करना भी जो है ना कुछ मानी रखता है। बात को समझिएगा, पॉइंट को समझिएगा। जिंदगी में, लाइफ में हासिल करना ही सब कुछ है या कुछ महसूस करना भी है? याद रखिए कि लेसन्स के, अगर किसी की एक मुस्कुराहट से आपका मुश्किल दिन आसान हो जाए, मुश्किल मतलब जो है ना टाइम आसान हो जाए, तो क्या ये कम है? अगर किसी की आवाज आपकी थकन कम कर दे तो क्या ये कम है? आप भी मुझे रोमान से सुन रहे हैं, ये रोमान है ना। अगर किसी की आवाज आपकी थकन कम कर दे तो क्या ये बेकार है? अगर कोई शख्स आपकी खामोशी में आपका हाल पूछ ले तो क्या ये मामूली बात है? अगर किसी की मौजूदगी में आपको ये एहसास हो कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है तो क्या ये किसी कामयाबी से कम है? ये सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। रोमान के हवाले से मैं यहां लिसनर्स बात करना चाहूंगा कि रोमान कभी कभी इंसान को उसकी अपनी जात से भी मिलवाता है। आप किसी खूबसूरत शाम में तन्हा बैठे हों, आसमान पर रंग बदल रहे हों, हवा में हल्की सी खनकी हो, कहीं दूर से कोई धुन सुनाई दे रही हो और आपके अंदर अचानक एक अजीब सा सुकून उतर आए, वहां कोई दूसरा शख्स मौजूद ना भी हो तो वो लम्हा रोमान से खाली नहीं, क्योंकि रोमान सिर्फ जाना किसी के साथ होने का नाम नहीं है, किसी लम्हे को पूरे दिल से महसूस करने का नाम है। और जब रोमान किसी ताल्लुक में दाखिल होते हैं ना, किसी रिलेशन में दाखिल होते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी भी खूबसूरत होने लगती है। वही सुबह मगर जो है ना किसी के उठ गए से मतलब जो है ना खास हो जाती है। वही चाय मगर किसी के साथ बैठकर जायका बदल जाता है। वही सफर मगर किसी की आवाज साथ हो तो रास्ता मुख्तसर महसूस नहीं होता। और मैं यहां मतलब मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वही बात मगर जो है ना किसी के चंद लफ्ज नींद से पहले दिल को सुकून दे दे तो मतलब जो है ना एक चीज दे दे तो पूरी रात जो है ना नर्म हो जाती है। रोमान जिंदगी के वाकयात नहीं बदलता, वो उन वाकयात को महसूस करने का अंदाज बदल देता है। कभी कभी रोमान सिर्फ जाना इतना होता है कि कोई आपकी बात पूरी होने से पहले मोबाइल की तरफ मतलब जो है ना मोबाइल को एक साइड पे रखते मोबाइल को पे रखते हैं और कहे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। कभी रोमान ये भी होता है कोई आपके चेहरे को देखकर पूछे कि आप थके हुए हैं। कभी रोमान ये भी होता है कि कोई आपके लिए अपनी मसरूफियात से चंद मिनट चुरा कर आपको टाइम दे। कभी रोमान ये भी होता है कि दो लोग एक ही कमरे में बैठे हों, दोनों खामोश हों, मगर दोनों को एक दूसरे की खामोशी से कोई शिकायत ना हो। रोमान में हमेशा बड़े वादे नहीं होते, कभी कभी तो रोमान एक छोटे से ख्याल में छुपा होता है। रास्ते में एहतियात से जाना, घर पहुंच कर बता देना, खाना खा लेना, ज्यादा देर तक जागना मत, ये जुमले बज़ाहिर कितने मामूली हैं, मगर जिस दिल को इनके पीछे देख

0: ऑलराइट जनाब, एक मरतब फिर मैं आप लोगों को ताहिर जमान वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ साथ हैं, मेरे संग संग हैं। रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में, जब शहर की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगती हैं और हर तरफ खामोशी अपनी अपनी आहट बढ़ती है, या मतलब यूं यूं यूं अगर मैं बोलूं तो
1: बस यही दुआ है कि दर्द ये कम।
0: रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में, जब शहर की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगती हैं और हर तरफ खामोशी अपने पर फैला देती है, इंसान को अपने अंदर की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। दिन भर हम लोगों में रहते हैं, दिन भर हम लोगों में गिरे रहते हैं, कामों में मसरूफ होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, अपनी परेशानियां छुपाते हैं, मगर रात किसी से कुछ नहीं छुपाती। रात के सन्नाटे में बैठकर इंसान अपने ही दिल के सामने आ बैठता है और फिर वो ऐसे साथ भी याद आने लगते हैं जिन्हें दिल के शोर में कहीं दुबा दिया था। और रात की तन्हाई के हॉल से मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं कहना चाहता हूँ रात की तन्हाई के हॉल से, ऐसी रातों में इंसान को मालूम होता है कि तन्हाई सिर्फ किसी के पास ना होने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान लोगों के दरमियान बैठा हुआ भी तन्हा होता है और कभी किसी एक मानुष एहसास के साथ बैठकर भी ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके करीब है। असल तन्हाई शायद ये है कि आपके दिल में बहुत कुछ हो मगर उसे सुनने वाला कोई ना हो, आपके पास कहने को हजारों बातें हों मगर आपको ये मालूम ना हो कि वो बात किसके सामने रखी जाए। आप मुस्कुरा रहे हो मगर अंदर कहीं एक थकन बैठी हो जिसे सिर्फ कोई बहुत अपना शख्स ही महसूस कर सके। और फिर ऐसे ही लम्हों में ख्याल आता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आखिर क्यों आते हैं, क्यों उनकी मौजूदगी बाकी सब लोगों से मुख्तलिफ महसूस होती है, क्यों उनके साथ चंद लम्हे गुजारने के बाद दिल हल्का होने लगता है, क्यों उनकी आवाज सुनकर एक अजीब सा इत्मीनान उतरता है, क्यों उनके साथ खामोश बैठना भी गुफ्तगू महसूस होता है, क्यों वो हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं। शायद इसलिए कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ रिश्ता बनकर नहीं आते, वो सुकून बनकर आते हैं। वो हमारी जिंदगी के मसाइल हल करने का दावा नहीं करते मगर उनके साथ बैठकर मसाइल इतने बड़े महसूस नहीं होते। वो हमारे जख्मों पर लंबी तकरीरें नहीं करते, बस कभी खामोशी से पास बैठकर कुछ कह देते हैं, कभी खामोशी से पास बैठ जाते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि तुम्हें हर हाल में मजबूत रहना है, बल्कि कभी कभी इतना कह देते हैं कि आज थक गए हो, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, सब कुछ आज ही हल करना जरूरी नहीं है। और जनाब, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, ताहिर जमान यहाँ ये बात कहना चाहेगा, इंसान को बाज़ुकात इलाज से ज्यादा ऐसे ही जुमले की जरूरत होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे सर्द रात में किसी दूर घर की रोशन खिड़की दिखाई दे। ये तस्वीर जरा महसूस कीजिएगा कि सर्द रात हो, कहीं दूर खिड़की दिखाई दे और उसमें मदम सी रोशनी, मगर उस रोशनी को सिर्फ देखकर दिल को मालूम होता है कि कहीं ना कहीं गर्मी मौजूद है, कहीं ना कहीं घर में मौजूद है। और मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा लिसंस के ताहिर ये बात कहना चाहेगा उनकी मौजूदगी हमें ये एहसास देती है कि दुनिया चाहे कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो, कितनी ही बेहस क्यों ना लगे, कहीं ना कहीं एक ऐसा दिल जरूर होता है जो हमारी खामोशी को भी सुन लेता है और सुकून देने वाले लोग अजीब होते हैं। उनके सामने हमें अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, अदाकारी नहीं करनी पड़ती। हम अपनी थकन के साथ जा सकते हैं, अपनी परेशानी के साथ जा सकते हैं, अपनी खामोशी के साथ जा सकते हैं, अपनी तकलीफ के साथ जा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आज हमारा दिल नहीं कर रहा बात करने का, और वो नाराज नहीं होते, वो हमारी खामोशी को अपनी तोहीन नहीं समझते। वो समझते हैं कि कभी कभी इंसान के पास अल्फाज नहीं होते, सिर्फ एक दिल होता है जो चाहता है कि कोई उसे कोई उसके उसके करीब बैठा रहे। ताहिर यहाँ ये बात कहना चाहेगा लिसनर्स के रात के सन्नाटे में शायद सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की कमी महसूस होती है जो दिन के शोर में हमें सुकून दिया करते थे। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका क्या क्या हुआ, उनका सब ठीक है ना, उनका उनके ये कि अपना ख्याल रखना। सब कुछ याद नहीं भी आता मगर महसूस जरूर होता है, और तब मालूम होता है कि किसी शख्स की कदर सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब वो हमारे सामने हो, कभी कभी उसकी असल कदर जो है ना उस टाइम मौजूद महसूस होती है, उसकी गैर मौजूदगी में महसूस होती है। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा कि किसी की मौजूदगी में हमें शायद अंदाजा ही नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना सुकून था। हम उसकी बातों को मामूल समझ लेते हैं, उसके पैगाम को या उसके पैगामात को समझते हैं, उसके सवालात को मामूल समझते हैं, उसका ख्याल रखना मामूल समझते हैं। फिर एक दिन वो मसरूफ हो जाते हैं, दूर हो जाता है, खामोश हो जाते हैं, या जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले जाती है, तब वही मामूली चीज अचानक बहुत कीमती महसूस होती है, बहुत कीमती लगती है। मैं यहाँ पे ताहिर जमान ये बात कहना चाहेगा लिसनर्स के, कभी कभी इंसान को किसी शख्स की जरूरत इसलिए नहीं होती कि वो उसके लिए कुछ कर दे, बस इसलिए होती है कि वो मौजूद रहे। ये एहसास है कि ये एहसास के कहीं कोई जिसे आपकी फिक्र है, जिसे आपके होने से फर्क पड़ता है, जो आपकी आवाज सुनकर पहचान लेता है कि आज आप पहले जैसे नहीं लग रहे। यह एहसास अपने अंदर एक अजीब सा ताकत रखता है, और यही तो रोमान की खूबसूरती है। रोमान सिर्फ जो है ना खूबसूरत अल्फाज, नजरों के मिलने या चांदनी रातों की बात नहीं है। रोमान तो उस वक्त भी होता है जब कोई आपकी खामोशी में आपका शोर सुन ले, जब कोई आपकी हंसी के पीछे थकन पहचान ले, जब कोई आपके मैठियों के ऊपर यकीन कर ले, या यकीन करने के बजाय दोबारा पूछे सच में ठीक हो, और फिर आपके पास जवाब ना भी हो तो वो आपसे जवाब का मुतालबा ना करे। याद रखिएगा लिसनर्स के, कुछ लोग आपको देखकर आपकी खूबसूरती या आपको देखकर आपकी खूबसूरती को नहीं बल्कि आपकी थकन देखते हैं, आपकी अल्फाज की थकन, आपके लफ्जों की थकन। कुछ लोग आपके लफ्ज नहीं लहजे सुनते हैं, कुछ लोग आपकी बात नहीं आपके पीछे छुपी हुई कैफियत समझते हैं, और ऐसे लोग अगर जिंदगी में मिल जाएं तो उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में गुफ्तगू करने वाले बहुत मिल जाएंगे मगर दिल को सुकून देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद इसीलिए रात की तन्हाई में बैठा हुआ इंसान उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है जिनके साथ उसे सुकून मिलता था, चैन मिलता था, उसके दिल को सुकून मिलता था। रात इंसान को यह भी सिखाती है कि हमें हर वक्त बहुत से लोगों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक ही शख्स काफी होता है, एक ऐसा शख्स जिससे बात करने के बाद जो है ना दिल के अंदर का शोर जरा कम हो जाए, एक ऐसा शख्स जिसके मैं हूं कहने से जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो, या जिंदगी की मुश्किलें खत्म ना हो मगर जो है ना उन्हें बर्दाश्त करने की एक ताकत जरूर आ जाए। और कभी कभी वो सुकून किसी इंसान की शक्ल में नहीं, किसी आवाज की शक्ल में भी नहीं, रेडियो की एक आवाज, फोन पर किसी का लहजा, किसी का मुख्तसर सा पैगाम, अजीब बात है ना, इंसान सामने नहीं होता मगर उसकी आवाज हमारे कमरों की खामोशी बदल देती है। शायद यही वजह है कि आवाज के रिश्ते भी इतने गहरे हो जाते हैं। एक आवाज बार बार सुनने से मानुस होती है, फिर मानुसियत अपनायत में बदलती है, और अपनायत कभी कभी एक ऐसी जगह बना लेती है लिसनर्स, जहां इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि एक आवाज इतनी अपनी कैसे हो गई। मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा आखिर में कि आखिर में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।